0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्समा पनि उपलब्ध छ।
1: सामाजिक सञ्जाल जी छानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फललना खैबै बिनी लिङ खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामो बिमारी छानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट एना यूआरएल चेक लना आक्षेप घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिन परिमो नुई तोय तारी शंख लैदी विषा बैंगरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगे तब क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
5: जसको नाम नै पर्याप्त छ
6: दिदी बहिनी
5: दिदी बहिनी
6: दिदी बहिनी
5: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ
6: हामी गर्न सक्छौ
5: गर्न सक्छौ

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बज्यो।

0: पुलिस दमकल एम्बुलेन्स को फोन नम्बर जुनसुक समय में चाहन सकता कंठ पारौ वा सबले देखने ठाव में राख
1: सार्वजनिक हित का लागि उज्यालो को अनुरोध।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज।

0: Extreme energy drink.
1: निकट माता दीदी बहिनी, विकट माता दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।

0: कागज के में छी वा और झिलकाई कई पर्सनल नंबर ब्लॉक लाई वधी पर्सनल मोबाइल नंबर में उन्हीं यो टेलीकॉमर बे ऑफिस तरी आई रा ब्लॉक लाई रखन खाई अन्य बैंगरी
1: बैंगरी
0: आ चार्ज तली

0: यो रेडियो दिदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्न को ठीक चार बजे।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: निकट मा दिदी बहिनी, विकट मा दिदी बहिनी।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।